0: दशम पहा अनुतुनाय दशम हाता लखंड रेडियो आईटीएन सबे श्रीलंकिया हंड
1: विलाव पेरवरे कलाई विनाडी काय
2: विलाव ओपवेत केन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबन कोटी अटे एनएलबी तनडे तहने लुतराईन प्रति संवर्धनेट तनंत शक्तियक वेमिन ओबा दिनवा रटा दिनवत तन निदहने बिलदीगेन ओबा कोटीपतिय कुवन